0: ने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
1: You, yeah, you listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
2: it could be you.
1: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
0: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे। अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
3: वसीम ज्वेलर्स।
4: Wrong tool for the job? Don't make that mistake with your van. Get up to 30% off selected new Toyota vans with a warranty up to 10 years or 100,000 miles with every qualifying routine service. Visit your nearest Toyota center or visit toyota.co.uk/vansavings for more details. Savings on selected vans ordered by the 30th of June 2026. UK residents. See toyota.co.uk for full details. T's and C's apply.
5: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
6: 25? Seriously?
5: Sounds like Ojo time.
6: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
5: Sorry about the wait. How can I help?
6: You can help me celebrate. I won.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
9: This is Sunrise, the UK's biggest.

क्लास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: With Brightsun Travel. Brightsun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on hand-picked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
1: 9:49 on Sunrise with me, Shabnam Sahi. Mr. Khan talking about the power of poetry. This reminded me of an interview I saw only the other day on YouTube. Javed Akhtar speaking about the power of words. Javed sahab kehte hain ki shabdon ka, lafzon ka ghaav jo hai na, wo kabhi nahi bharta. आप भूखे को चाहे खाना ना दे, प्यासे को पानी ना दे, लेकिन उनसे अगर दो लफ्ज प्यार से, इज्जत से कहेंगे ना, वो कभी नहीं भूलेगा. सिमिलरली खाना और पानी देने के बावजूद अगर आप उनकी इंसल्ट कर देना, वो हिसाब बराबर करेगा. वर्ड्स आर डबल एज्ड सोर्ड्स, यूज देम केयरफुली.

0: 2013 की फिल्म लुटेरा, द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी हैवीली इंस्पायर्ड बाय अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी बाय साकी ओ हेनरी, द लास्ट लीफ.
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
0: आई एब्सोल्युटली लव द फिल्म, आई लव द सॉन्ग. Many of you pointing out that it has an old world feel to it, absolutely. Because the story, if you remember, was set in 1960s Bengal, in the years after partition. Sawar lu Monali Thakur ki awaaz mein. Lijiye aapki subah ko. Hopefully, sawar diya humne aapki pasand play karke.
2: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
3: Bahut hua setback. अब होगा मेरा कमबैक.
0: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर डेडिकेटेड टू सुखी संधू इन ब्रिस्टल. सुखी, यू शेयर्ड समथिंग सो क्लेवर यस्टरडे. द डेविल डजंट वेयर प्राडा, ऑफ कोर्स नॉट, द डेविल वेयर्स अ परांदा. लव इट, एब्सोल्युटली लव इट. पति पत्नी और वो दो, रूप दी और रानी ऑन सनराइज. गुड मॉर्निंग.

दर्शन रावल, रोचक कोहली। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा द न्यू वर्जन, रिलेटिवली न्यू वर्जन। नोट जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में जलता कोई दिया। नॉट दैट वन। राइट नाउ ऑफ कोर्स वी आर रैपिंग अप दिस आवर विद अ सॉन्ग फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज, खान साहब, पंडित कौशिक जोशी इन पीटरबरो। Have a blessed birthday. You even told me how old you are. Should I be broadcasting it to the rest of the world? I'm not quite sure. Ridiculously young, honestly. Have a beautiful birthday. Shashwat Sachdev, Khan Sahab. Dil pe zakhm khate hain, jaan se guzarte hain, jurm sirf itna hai, unse pyar karte hain. Jahan bhi aap sun rahe hain, jo bhi sak kar rahe hain. रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक। आपका टू वेरी स्पेशल गेस्ट्स इन द स्टूडियो इन द नेक्स्ट आवर। वी गोना बी चिट चैटिंग अबाउट समथिंग एक्साइटिंग, आई प्रॉमिस यू।

0: तू सच में चांद है यार, नूर भी गुरूर भी और दूर भी।
1: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents चांद मेरा दिल। Watch Ananya Pandey and Lakshya in चांद मेरा दिल, coming to cinemas on May 22nd.
2: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल।
3: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी Bosch बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की Bosch गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
2: Hey, this is Paul Shah. Don't forget to join me weekdays on Breakfast with Vitabiotics from 6 a.m. Hey, if I can get up that early, so can you. Don't be lazy.